0: aim of creating physically and tactically trained recruits. Senior Lashkar commanders are also regularly visiting these centers to motivate recruits and reinforce the organization's ideology. Perhaps the biggest concern, the terror group's growing focus on artificial intelligence. Security agencies say fresh recruits are now receiving training in modern technologies, including AI tools.
1: बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के यूथ की सूरत हाल है कि इनको इंफॉर्मेशन जो इनके पास मौजूद है वो टोटल सोशल मीडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन है और आपको पता है ये AI का दौर है, दुश्मन बेशुमार इसके अंदर काम कर रहा है। चंद जो फेक IDs के ऊपर पोस्टें लगी होती हैं उनको ही शेयर कर देना, उन्हीं के ऊपर कमेंट्स कर देना, मैं समझता हूं ये छोटी जहनीयत और कच्ची सोच और प्रीमेच्योर डिजीज की सिम्टम हो सकती है। आप इसको किसी बेदारी का या किसी शऊर का नाम नहीं दे सकते।
0: Officials say women reportedly make up a significant number of participants in these AI training programs. Security agencies warn that these capabilities could eventually be used for maritime attacks, cyber operations, and AI-powered propaganda campaigns. Officials say Indian agencies are closely monitoring these developments, viewing them as an evolving security challenge. As terror groups adapt to new technologies and new methods, India's security agencies are watching closely. With Mukesh Singer, Bureau Report, NDTV.

0: Jersey.
1: देश का टायर जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
5: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
6: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
7: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
8: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: खा सुबा।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा,
2: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
3: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
4: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
5: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
6: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
2: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
3: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
4: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
5: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ। 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
5: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
6: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
7: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
8: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
7: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
8: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
7: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसा

0: जरा भी शर्म नहीं आती है? आप तो किसने हक दिया हाथ उठाने का?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
0: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर है आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
1: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
0: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसा

0: Headlines. The state is gearing up for the annual chariot festival that will be observed tomorrow here in the state of West Bengal as well as Puri's Jagannath Dham in Odisha.
1: Bringing you all the updates tomorrow on that face-off, which is expected to continue between the Trinamool Congress and the BJP. Kunal Ghosh has also responded and reacted to the story. Listen in.
2: रथ यात्रा बंगाल में होता था, वो जो एलिगेशन बोल रहा है उसका कोई बेस ही नहीं है। और हर एक नॉट ओनली रथ यात्रा, हर धर्म का जो भी कोई स्पेशल डे होता है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सबको डब्ल्यू किया था।
3: तारकेश्वर के श्रावणी मेला में जो जो पुण्यार्थी जाएंगे उन का बारिश होगा।
4: स्वास्थ्य बीमा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है।
2: आप देखिए, बंगाल में जनता के लिए गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारा ये स्टैंड था जो स्वास्थ्य शास्त्री ममता दीदी ने सबके लिए कर दिया था, 5 लाख तक ये फ्री। तो भाजपा बोल रहे थे आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत जो क्राइटेरिया है ये तो सबको नहीं मिलेगा। तो अब जब उसका गवर्नमेंट चलाया वो लोग बोला आयुष्मान भारत होगा। फिर ये असेंबली में एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आया जिसमें लिखा हुआ है जिस लोगों को आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा उसको ऑनरेबल सीएम का रिलीफ फंड से हेल्प किया जाएगा। ये तो और बड़ा कंफ्यूजन है। पॉइंट नंबर वन।
1: Staying with the state of West Bengal, nearly 2 decades after she was forced to leave Kolkata amid violent protests, Bangladesh-born author Taslima Nasreen is set to return to the city. Nasreen will attend an anti-fundamentalism program at Rabindra Sadan on the 1st of August. The exiled writer had left Kolkata in the year 2007 following protests over her writings, which critics allege hurt religious sentiments. The BJP has welcomed Nasreen's visit, calling it, quote-unquote, a matter of pride. BJP leader Agnimitra Paul has said a new Bengal would not bow before fundamentalist forces. The Trinamool Congress, however, has strongly criticized BJP's stand. TMC has alleged that Nasreen had reportedly spoken against the Muslim community and Shariat in Islam. TMC further claimed that the BJP supports people who make anti-Muslim remarks.
5: আমি বলেছিলাম তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠস্বরকে কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে? তিনি তো ওখানে যে হিন্দু নিপীড়ন, যে অত্যাচার শিকার, তা নিয়ে তিনি লজ্জা লিখেছিলেন। সেই বই আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য যাতে না আসে সেটাও করেছিলেন ব্লক ভোটের স্বার্থে। তা কোনো লেখিকা আসবেন এখানে আমারই দাবি ছিল, তিনি আসছেন, স্বাগত তাকে।
6: आने का मौका नहीं मिला, नहीं बोलेंगे। उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको फेंक दिया गया। लेफ्ट फ्रंट इतना मुसलमान को लेकर इतना बात करते हैं, लेकिन जब उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहां से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, की हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लिमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे।
7: द हिपोक्रेसी ऑफ द फ्री स्पीच इकोसिस्टम, संविधान बचाओ इकोसिस्टम, Taslima Nasreen, a noted author who has written extensively on the kind of persecution of Hindus that has taken place at the hands of Islamists in Bangladesh, is now returning to Kolkata. Instead of welcoming it, the TMC and the ISF and Congress put vote bank above even women's security or women's right to speak, and they are abusing her, threatening her, and they are saying that she should not be there, she should not be allowed. This is their intolerance. Just because she has written about the persecution of Hindus at hands of Islamists, they want to block her. They banned her books. They have abused her, heckled her.
8: देखिए, तस्लिमा नसरीन बांग्लादेश का राइटर थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इस्लाम का, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे कुछ बोला है। तो अभी

0: जो मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे उसको तो डबल इंजन सरकार इज्जत करेगी, ये यार बोलने का दूसरा बात क्या है।
1: बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया, बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में, बिजली के बारे में या वुमेन सेफ्टी के बारे में, जो जो प्रॉमिस करके आया था फेलियर है, अभी तक भी फेलियर है। ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ दो चार अनाप शनाप बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनके लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में?
2: We're going to be slipping a short break. Once we come back, we will bring you the highlights from last night's semi-final, where Spain has now made it to the finals. All eyes will be on the match tonight to know who they play against. Also, we're going to talk about Odyssey, which is set to sail into theaters on the 17th of July. Both those stories coming up in moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
11: When markets close, clarity matters as much as speed.
10: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
11: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद।
6: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
7: When markets close, clarity matters as much as speed.
6: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
7: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
6: Join us before every closing bell
7: on India Market Close.
8: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
9: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आकर मसाला।
13: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
14: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
15: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
16: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
17: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
18: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
19: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
20: We've got a fantastic jury. And we've left all decisions to the wisdom of the jury.
13: Who will earn India's top business honors? Find out.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी everyday.
8: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
9: When markets close, clarity matters as much as speed.
8: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
9: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
8: Join us before every closing bell
9: on India Market Close.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा।
13: सबका राजा आकर मसाला।
14: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
15: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
7: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
16: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
17: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
18: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
19: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
20: योर फ्रेंड सेड ये ले ले। We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
21: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
22: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
23: 1933। सरसों से सरसों।
8: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
24: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
25: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
26: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
27: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
26: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
27: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
26: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे?
8: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom with me, Raisha Sehgal. Shifting our focusing on with stories from Tamil Nadu. We have some big news for all our viewers. Tamil Nadu Chief Minister Vijay is now all set to script political and even cinematic history. His much-awaited movie, Jananayagan, will finally release on July 23rd. The movie has already cleared the censor hurdle with as a A certificate after months.

0: and a reshaped defense was torn apart.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé. Et nous, on a été un peu en dessous. On a commis des erreurs, plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et certainement aussi avec, même si je pensais que l'ensemble du groupe avait bien récupéré, on était un ton en dessous. Plus, bon, après là.
0: Spain kept a clean sheet in 6 of their 7 games. La Roja has now gone 37 games undefeated. Their coach calling them unstoppable.
2: El mensaje quedaba claro. Este equipo es un equipo muy comprometido. Hemos dicho que lo he comentado y tiene mucho más calado de lo que seguramente en lo reiterativo que sea le daréis más importancia. El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es clave. Este es un equipo. Y eso, pues con un equipo es imparable. Y ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
0: Spain will play their first World Cup final since winning it in 2010. Facing them will be either England or Argentina. Rica Roy for NDTV.
3: समर में बाल्टी तो चाहिए।
4: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
5: When markets close, clarity matters as much as speed.
4: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
5: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
4: Join us before every closing bell
5: on India Market Close.
6: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस तेल में।
9: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
10: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani.
11: Launch control 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: The Shiv Sena Shinde faction carburetor is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
15: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
16: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
17: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
18: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहां भी अन्याय हो,
17: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर है आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
18: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है.
17: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे. क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
18: प्रशिक्षण हम हमारे
17: नहीं मांगेंगे
18: सर.
19: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
20: India Inc.'s most respected names chose India.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: दिस इज मॉर्निंग शोज द डे। मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स। बाय मिडडे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हेन द राइट इनसाइट्स हेल्प्स यू रीथिंक द डे। ट्रेड्स, ट्रेंड्स, द मूव्स दैट मैटर। जॉइन मी निशा पोद्दार फॉर मार्केट्स एट 12। योर एज फॉर एवरी मूव।
11: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
12: When markets close, clarity matters as much as speed.
11: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
12: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
11: Join us before every closing bell
12: on India Market Close.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।
16: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस।
17: बाय नाउ
18: सेल।
17: होल्ड होल्ड।
18: बाय
17: सेल इमीडिएटली।
9: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत Monday to Friday, 10:30 AM, only on NDTV Profit.
19: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
20: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
21: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: दे से मॉर्निंग शोज द डे मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स बाय मिड डे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट दैट्स व्हेन द राइट इनसाइट्स हेल्प्स यू रीथिंक द डे ट्रेड्स ट्रेंड्स द मूव्स दैट मैटर जॉइन मी निशा पोद्दार फॉर मार्केट्स एट 12 योर एज फॉर एवरी मूव।
9: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
10: When markets close, clarity matters as much as speed.
9: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
10: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
9: Join us before every closing bell
10: on India Market Close.

0: BJP claims PBK functionary to bribe. It has also mocked Vijay. It has accused.
1: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12. Your edge for every move.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा क्या स्वाद है।
12: अरे मेरी राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
11: अरे मेरे राजा।
12: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
13: When markets close, clarity matters as much as speed.
12: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
13: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
12: Join us before every closing bell
13: on India Market Close.

0: action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
1: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhadre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
2: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो।
1: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
2: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
1: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे? क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
2: प्रशिक्षण हम हमारे
1: नहीं मांगेंगे
2: सर।
3: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
4: Buy now. Sell immediately.
5: Hold it, boss.
6: Buy now.
7: Sell.
8: Hold. Hold.
9: Buy.
10: Sell immediately.
11: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: Those people went to jail, as they should. But let me ask you.
1: You want me, Padmaja, you want me to quote Sardar Patel again? Sardar Patel again wrote a letter on this, कि RSS के लोग जबरदस्ती बल का प्रयोग करके सत्ता पे कब्जा करना चाहती है। मेरी चिट्ठी नहीं है, 1949।
2: आशुतोष, फिर RSS का वो लेटर भी बता दीजिए कि जिसमें सरदार पटेल ने लिखा था कि संघ की देशभक्ति से मैं प्रभावित हूँ।
1: डॉक्टर राजेंद्र
2: प्रसाद, मैं आपको 10 लेटर दिखा दूंगा जिसमें सरदार पटेल ने संघ की तारीफ की।
1: इनके संगठन के लोग मुसलमानों का भेद।
2: आशुतोष, मैं आपको 10 लेटर दिखा दूंगा जिसमें सरदार पटेल ने संघ की तारीफ की थी। संघ ने यह भी कहा था कि संघ राष्ट्रवादी संगठन,
1: ये
2: संघ की देशभक्ति में कोई
1: राष्ट्रपति सरदार राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी है।
2: सरदार पटेल ने कोई एक लेटर लिखा है क्या? सरदार पटेल ने 50 लेटर लिखे होंगे जिसमें से 40 लेटर में संघ की तारीफ की है।
0: ओके, यू नो अगेन लाइक आई सेड, फॉर द लास्ट 75 इयर्स वी हैव बीन हैविंग दिस डिबेट अबाउट द आरएसएस एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 7500 इयर्स वी कैन कंटिन्यू टू हैव दिस डिबेट, बट इन द प्रेजेंट डे टू कंपेयर द आरएसएस to some Maulana of a Tipu Sultan Masjid or some AIMIM or some random, some front or, who's giving fatwas, is it okay? I will leave it to your wisdom. But a more fundamental question is, I'm just curious, Ajay Alok, since you are now supporting the arrival of Taslima Nasreen in West Bengal, do you also have the support in this of people who have recently entered the NDA fold? MPs of the NCPI, like Khalilur Rahman, like Abu Tahir Khan, like Yusuf Pathan, now they are sitting on the same side as you. Are all of these people happy with Taslima Nasreen coming to Kolkata?
3: Exactly.
0: Dr. Ajay Alok?
4: Oh, exactly. Oh, yeah, I'm coming up. There's a good saying, you know, in the last 20-25 years, there's a good saying in this country, especially among the Lutyens zone. Earlier, they used to call that, yes, intelligent people are only secular. No. Now, with all this discussion happening for the last 25 minutes, the intelligentsia of this country must understand, since it is an English-speaking channel, sick minds are becoming secular. Look at the kind of defense they are throwing out, taking RSS from where, from nowhere. If that was the case of the RSS, why your PM Mr. Nehru ne 1962 ki Republic Day parade mein RSS ko parade karne ke liye special nyota kyun diya tha?
3: Just a simple thing, Ajay Alok.
4: One after the other, because if you want to defend one lie, you have to speak 50 more lies. Now, as far as NDA folds, those MPs who are coming, whatever the parties, we are not against Muslims of this country. We are not against Muslims of this country. We are having, the Prime Minister very clearly says, Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. When we are against the Muslims, their population is 17-18%, but 35% of the beneficiary of all the government programs are Muslims. Did we ever object to it? Many of the people say, why they are not voting for BJP, why they are taking so many advantage?
0: Maybe Sabka Vishwas is fine, Dr. Ajay Alok, but I think for a moment you should also stop and ask Abu Tahir Khan if he will go back to his constituency and say ki humne Taslima Nasreen ko welcome kiya tha Kolkata ke andar. Ya phir Firhad Hakim se bhi pooch lijiye. Ya phir Akhur Zaman se bhi pooch lijiye.
1: What is the biggest joke?
4: Whatever they have done in the past, if they are in NDA, they will behave like NDA. This is what you call governance, and this is what you call leadership. It's not like haywire.
0: Okay, everyone like wants to come in. Shubhankar Bhattacharya, then Ashutosh. Shubhankar Bhattacharya, then Ashutosh.
4: Does something opposite?
0: Yeah, everyone has questions for you. Shubhankar Bhattacharya.
4: Does Rahul Gandhi?
3: Alok ji. थैंक यू पद्मजा. आलोक जी अब सुन लीजिए. आई आस्क ओनली अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, दैट द सेम थिंग व्हाट पद्मजा इज सेइंग, दैट हैव यू एक्चुअली टेकन कंसेंट फ्रॉम एवरी मुस्लिम लीडर्स इन योर पार्टी, दैट डू दे अग्री विथ तस्लीमा नसरीन्स पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन्ड इन दुई खंडितो? वेरी सिंपली आई एम आस्किंग. The way she has projected Islam, the way she has projected Prophet Muhammad, so do they actually, now they accept whatever Taslima Nasreen has mentioned over there?
0: Aisa na ho, aane wale dinon mein sabka saath sabka vikas ki asliyat aapko pata chal jaye, Dr. Ajay Alok.
3: Congress.
0: Abhi parliament session shuru hone se pehle hi 2-3 log idhar ke udhar ho jayenge. Is this a risk worth taking? Abhi dekhiye, ek ek number aap jod rahe, 3-4 idhar udhar ho jayenge.
1: Padmaja, can I come in? See. You know the biggest joke that which Ajay Alok has said just
4: Abhi
1: now?
4: Ek
1: Bharatiya Janata Party ek Pandya, ek, ka, party hai.
4: Pandya, when we were teenagers,
0: No, Ashutosh is telling you a joke. Yes. Ashutosh.
4: When we were teenagers.
1: Ajay Alok has just a joke. Ajay just said a joke and I laughed. That BJP is the biggest Hitaishi of Musalman.
4: हाँ एक मिनट
1: बात अजय आलोक को पता नहीं है आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी गणतंत्र दिवस की परेड में नहीं बुलाया था और अगर अजय आलोक इसको फैक्चुअली करेक्ट करेंगे
4: आपको आरएसएस को लेके
1: नहीं
4: डोंट बिकम सो मच
0: ओके लास्ट 30 सेकंड्स डॉक्टर अजय आलोक तस्लीमा नसरीन को बुलाना महंगा ना पड़ जाए
4: कोई महंगा नहीं पड़ेगा व्हेन वी वर टीनेजर्स एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की अग्निपथ एंड देयर वाज अ वेरी फेमस डायलॉग टोपी संभालो बाबूराव हवा तेज चलता है कहीं उड़ ना जाए तो पार्टी संभालो गवंडियों कहीं उड़ ना जाए सब भाग रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है
0: चलिए ऑन दैट नोट कौन किधर भाग रहा है वी विल सी इन जस्ट अ फ्यू डेज थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन मी बिकॉज दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अहेड ऑन द शो एज वेल ऑन पॉलिटिक्स विद पद्मज All right, the Modi government is well on track for its Mission 360 to get the delimitation bill passed, which will enable the women's reservation to be operationalized as well. And the latest addition in this Mission 360 is NCP Sharad Pawar. The faction has 8 MPs in the Lok Sabha, 1 in the Rajya Sabha. Already the movement in this direction is happening at lightning speed and 4 meetings in the last 24 hours have made the about this even more feverish. First was the meeting between NCP Sharad Pawar leader Jayant Patil and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. This meeting took place yesterday. Second was a meeting held late yesterday night between Eknath Shinde and Home Minister Amit Shah. 6 Uddhav MPs who had crossed over were present in that meeting. Then rebel TMC MPs who had merged with the NCPI met Lok Sabha Speaker Om Birla to decide on their seating in Parliament and also informed him that they have designated Sudeep Bandopadhyay as their floor leader, Shatabdi Roy as the deputy leader and Kakoli Ghosh Dastidar as their chief whip. Now, as far as Eknath Shinde and the NCPI are concerned, most of these crossovers were already known. But the big suspense is, will Sharad Pawar's party vote on the same side as the government when it comes to the crunch? Even now, the Sharad Pawar faction is denying it on the face of it. But has the die already been cast?
5: अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है कोई भी चर्चा डी लिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी तब डीएमके हो हम हो सपा हो 50% के बारे में हम सोचेंगे ऐसा हमने किया था अभी जो सत्ता में है उनको सो लेट मी रीअश्योर यू दैट ऑल 8 MPs ऑफ NCP-SP एंड ऑल आवर MLAs वी स्टिक टुगेदर
6: दिस वाज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू माय प्रेसिडेंट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटी कॉल्ड युवनेश्वरपुर देयर The mayor was disqualified. Nagaradhyaksha was disqualified.
7: Sanjay Rao.
0: Already, Dr. Ajay Alok has left us with a dialogue from Agnipath saying, Topi sambhal, kahi ur na jaye. Sameer Chaugankar, Ashutosh, book continue with us. I'm going to ask you straight away. NCP Sharad Pawar, is it going to vote with the government or not? Sameer ji.
2: 100%. जिस तरीके से कल शरद पवार की जो बैठक हुई है जयंत पाटिल के साथ जिस तरीके से सुप्रिया सुले की कल देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने प्रेस ब्रीफिंग की और बहुत स्पष्ट कहा कि इस पर विचार करेंगे यह तय है कि शरद पवार के 8 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर सेशन के अंदर बिल आता है तो उसके समर्थन में वोट करेंगे और ये हो सकता है कि वो वॉकआउट कर जाए उस स्थिति में भी सरकार का समर्थन मिलने वाला है और इस मामले में कोई दोहराई नहीं बस ये देखना है कि अभी बातचीत चल रही है कि स्टेट लेवल पर भी इनका समर्थन होगा क्या दोनों एनसीपी मर्ज होकर एनडीए का हिस्सा बनेंगी या फिलहाल सिर्फ शरद पवार अभी वॉकआउट कर जाएंगे उनकी टीम पार्टी वॉकआउट कर जाएगी या वो लोकसभा के अंदर एनडीए के फेवर में वोट करेगी ये देखने वाली बात होगी तय है कि वो अब एनडीए के साथ जा रहे हैं किस तरीके से जाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है सेशन में अगर ये बिल आता है तो 100% एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो है वो सरकार का समर्थन करने जा रही है।
0: दोनों साथ में मर्ज होकर के फिर जाकर के एनडीए में भी मिल सकते हैं, बिकॉज कल जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग थी उसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे,
2: प्रफुल्ल पटेल भी थे उसके
0: साथ में, सब लोग साथ में
2: मीटिंग भी थे उसके अंदर।
0: पर वो तो कह रहे हैं, जयंत पाटिल तो कह रहे हैं कि मेरी कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बारे में अवगत करा गए थे।
2: ठीक है, वो तो मतलब एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी मीटिंग क्यों देर रात को मीटिंग हुई, उसके लिए उनको देर रात मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। ये देर रात की मीटिंग बता रही है कि मीटिंग क्यों पर्पस हुई थी, और सारे मुझे लगता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे कि स्टेट कौन लीड करेगा, सेंटर में कौन लीड करेगा, क्या सुप्रिया मिनिस्टर सुले मंत्री बनेगी, ये सारी बातें मुझे लगता है समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये तय है कि अब शरद पवार का मन बन गया है और वो एनडीए के साथ जा रहे हैं।
0: Ashutosh, then does it mean we are going to see Supriya Sule accommodated at the center as a minister, with Praful Patel largely taking care of the party and the alliance at the state? What are you hearing about which way Sharad Pawar's party is headed now?
1: Padmaja, first of all, I will not make any prediction, because you know my experience in the last 12 years is any prediction made is always going to be wrong. So I will not make any prediction at all. So what I read is that I think Sharad Pawar politics is almost over in Maharashtra, and basically he is trying to survive, and not he, but basically he is trying to make some ground for his daughter Supriya Sule, because that's the only thing left with him. As practically, if you look at, there are 8 members of parliament from the Sharad Pawar group, but how many of them are going to be with him, that's a big question. And and in my opinion, this Sharad Pawar party will again will either collapse within a few days or few weeks, or they will merge with the BJP sooner or later. Otherwise they can't survive. But and I think
0: In the long run, Samir ji, अगर वो मर्ज कर भी जाते हैं तो कि पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो वोट बैंक है एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक, और जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे तो उसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा था, तो एक तरीके से इट्स गोइंग टू बी द किस ऑफ डेथ। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सुप्रिया सुले, इफ वी अज्यूम दैट शी इज गोइंग टू बी अकोमोडेटेड एट द सेंटर, इन द लॉन्ग रन द एनसीपी विल बी ओवर, अगले चुनाव में तो हार जाएंगे ना वो फिर।
2: नहीं, मुझे लगता है कि वो एनसीपी में मर्ज करके जाएंगे, और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जिनका वोटर है, जो बारामती से सुप्रिया सुले सांसद बनती है, वहाँ उनका मराठा वोटर बहुत ज़्यादा है जो शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है वो बीजेपी में मर्ज नहीं करेंगे, वो एनसीपी में मर्ज होगी और एनसीपी समर्थन देने वाली है। और शरद पवार जानते हैं कि अब उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक समय नहीं है, उनका हेल्थ भी बहुत खराब है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो सत्ता आने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से उद्धव पार्टी की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर है, शरद पवार की पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है, तो उन्हें मालूम है कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आएंगे नहीं, तो कब तक वो खाली अपनी बेटी को सांसद बनाकर बारामती के अंदर बिठा के रखेंगे, और जो डेवलपमेंट के काम करना है उसके लिए आपको फंड नहीं मिलता स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब जाना पड़ेगा, और उनको यह भी मालूम है कि जब अजीत पवार चले गए थे एनसीपी के साथ, उसके बाद विधानसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन अजीत पवार ने किया, 42-44 एमएलए वो लेकर आए, तो जनता उनके साथ जा रही है, और मुझे लग रहा है कि शरद पवार को लग गया है कि अगर राजनीति में अब सर्वाइव करना है बेटी के लिए तो मुझे एनडीए साथ जाना होगा। अब कांग्रेस के साथ रहकर कोई भविष्य नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई भविष्य नहीं है।
0: सारे लोग ऑन बोर्ड हैं इससे, क्योंकि यह भी खबर आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस के साथ मर्ज करने के फेवर में हैं। अगर शरद पवार सुप्रिया सुले जाते हैं एनसीपी के साथ मर्ज करने में, तो क्या उसमें भी टूट हो सकती है, कुछ लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या सब एक साथ ही जाएंगे?
2: नहीं, मुझे लगता है लगभग सारे सांसद विधायक एक साथ जाएंगे। जितेन आवाड़ को दिक्कत जरूर हो सकती है, जितेन आवाड़ जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर शरद पवार ने अगर मन बना लिया कि मर्ज कर
0: अगर हसन मुशरफ और नवाब मलिक आ सकते हैं तो जितेन आवाड़ क्यों
2: वो वही जाएंगे, शरद पवार मूड बना लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सारे एमएलए और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ में आ जाएंगे।
0: देखिए, अगर फिराद हकीम जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आ सकते हैं यहाँ पे हसन मुशरफ, नवाब मलिक, जिसके के लिए बीजेपी कैंपेन तक नहीं करती है, एंड येट ही कंटिन्यूज टू स्टे विद द पार्टी। But where do the numbers stand right now? Because the next 5 days, not even 5 days, the next 2 days are going to be critical. We are in Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days, you're going to see phenomenal changes likely happen. Now, let's take a look at what is the existing strength of the NDA. Essentially, you've got 298 plus NCPI 20, UBT Rebels 6 already joining them. NCP Sharad Pawar, our experts are saying, 8 of them are going to be joining. Now, YSRCP had already voted with the NDA, so four of theirs. We are also putting DMK over here, 22. I will tell you why in just a second. But basically, that means NDA is short of only two for that magic figure of 360. Now, where does this additional two come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. Nine remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and seven independents. सिर्फ दो की और जरूरत है समीर जी.
2: जेएम विल सपोर्ट, उसने बोल दिया जेएम ने कि वो सपोर्ट कर सकता है इसमें.
0: तो बस और
2: शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके अरविंद सावंत ने भी बोल दिया है कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है.
0: यानी कि 360 मिल गए.
2: बिल्कुल,
0: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
2: उसमें से कई एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना.
0: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके. डू यू थिंक दिस 22 इज गोइंग टू क्रॉस ओवर एंड वोट विद द एनडीए? एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP, Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
1: See, Padmaja, we are assuming that the similar will be again table in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?
0: BJP was always willing. Amit Shah said it on the floor of the house. He said, "Mujhe ek ghanta DJ mein abhi link karke lata."
1: No, Padmaja, I don't buy that argument, because if BJP was very serious enough, they should have put the things in the bill itself. It's a legal document. The legal document has to be vetted. It has to be seen, because it's not any normal document. So, and if the BJP was so serious about it, they would have brought an amendment in the parliament. They didn't bring the amendment.
0: Very clear that that's going to be an amended bill. So you think nobody, including the DMK, is going to have a problem? Why I'm again asking this is because in a rally, Vijay said that delimitation is going to be the death knell for parties in the south, for the southern states. But don't you think the DMK is taking a very big risk if they vote for this bill?
1: Padmaja, see, the delimitation has to be done. The women bill has to be passed. Nobody has a problem with the delimitation bill. In principle, nobody has a problem with the women's bill. The problem was that if the population is going to define the number of seats, that's why the South Indian states were very apprehensive about it. And they made it very clear. Now, if the 50% formula is there, then DMK will also not have a problem. Others will also not have a problem. The issue is the BJP is conceding opposition's point. If they are conceding, if they are climbing down, then why the opposition should have a problem?
0: Okay, great. So even the DMK shouldn't have a problem. Now, what I'm interested in is what's happening in the Samajwadi Party. Kya wo abstain kar sakte hain, Samir ji? Kya? I mean, 360 plus to ho hi gaye hain according to this figure, but 360 se zyada bhi ho sakte hain, abstention bhi ho sakte hain.
2: Akhilesh Yadav samarthan kar sakte hain is bill ka. 11th aur bilkul is baat ki khabar hai ki Akhilesh Yadav
0: kya April mein?
2: Nahi, mujhe lag raha hai ki ab Akhilesh Yadav jo 50% ki baat hai us par samarthan kar sakte hain, aur agle Akhilesh Yadav samarthan nahi karenge to ye maan ke chalenge Samajwadi Party ke kafi member of parliament wahan se एबसेंट करने वाले पार्लियामेंट के अंदर, और कई कांग्रेस के सांसद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एबसेंट करेंगे. इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है.
0: कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट?
2: यस, कांग्रेस के भी करने वाले हैं. बिल अगर आता है इसका तो अपोज कर.
0: कांग्रेस के कहां के सांसद एब्सटेन करेंगे?
2: अब ये पता नहीं पड़ रहा है कहां के, लेकिन करने वाले जरूर है. ये आप तय मान के चलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट करेंगे उस दिन.
0: All right. So, more breaking news being given here by Sameer Chogankar that there could be. Yes, Ashutosh ji, do you have something to say about it?
1: No, I disagree with Sameer. He's a dear friend, but I disagree with him.
0: All right. We will not have to wait for very long. Like I said, just 4 days left. But from the looks of it, 360 seems to be a given now, which means that delimitation will happen, women's reservation will come in, and we are going to see a completely new election in 2029. And who knows, maybe even one nation, one election. Stay with NDTV for the very latest. Thanks for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है। शुद्धता

0: और गुणवत्ता के साथ।
1: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
1: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Now, over 6 months of a legal battle, Jananayagan is going to be out on the 23rd of July. Satluj streaming storm rages on. Sources have told NDTV that the IT ministry is now mulling action against OTT platform Z5 for releasing the controversial film without CBFC certification. Sources say the government is also considering a certification requirement for films and content on OTT platforms in the future.
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी
1: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना पसीना मत बहाओ बर्जर रूफ कूलर सील लगाओ ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark
4: और mustard oil के लिए सिर्फ P mark.
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
6: P mark the mustard specialist since 1933. बरसों से सरसों.
7: कुछ तो बात है इस दिल में.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
13: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
14: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
15: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
16: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस तेल में।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा,
12: रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
13: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
14: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
15: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
16: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना।

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
8: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
9: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
10: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
11: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage.

0: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
1: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
2: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
3: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
4: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो।
3: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
4: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
3: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे? क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
4: प्रशिक्षण हम हमारे
3: नहीं मांगेंगे
4: सर।

0: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
1: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
2: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
3: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
4: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो
3: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
4: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
3: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
4: प्रशिक्षण हम हमारे
3: नहीं मांगेंगे
4: सर।
5: Had it not been for NDTV's coverage, none of this

0: एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की अग्निपथ, एंड देयर वाज अ वेरी फेमस डायलॉग, टोपी संभालो बाबूराव हवा तेज चलता है कहीं उड़ ना जाए, तो पार्टी संभालो गवंडियों कहीं उड़ ना जाए, सब भाग रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है।
1: चलिए ऑन दैट नोट, कौन किधर भाग रहा है, वी विल सी इन जस्ट अ फ्यू डेज। थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन मी, बिकॉज दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अहेड ऑन द शो एज वेल ऑन पॉलिटिक्स विद पद्मज। All right, the Modi government is well on track for its Mission 360 to get the delimitation bill passed, which will enable the women's reservation to be operationalized as well. And the latest addition in this Mission 360 is NCP Sharad Pawar. The faction has 8 MPs in the Lok Sabha, 1 in the Rajya Sabha. Already the movement in this direction is happening at lightning speed, and 4 meetings in the last 24 hours have made the buzz about this even more feverish. First was the meeting between NCP Sharad Pawar leader Jayant Patil and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. This meeting took place yesterday. Second was a meeting held late yesterday night between Eknath Shinde and Home Minister Amit Shah. 6 Uddhav MPs who had crossed over were present in that meeting. Then rebel TMC MPs who had merged with the NCPI met Lok Sabha Speaker Om Birla to decide on their seating in Parliament and also informed him that they have designated Sudeep Bandopadhyay as their floor leader, Shatabdi Roy as the deputy leader, and Kakoli Ghosh Dastidar as their chief whip. Now, as far as Eknath Shinde and the NCPI are concerned, most of these crossovers were already known. But the big suspense is, will Sharad Pawar's party vote on the same side as the government when it comes to the crunch? Even now, the Sharad Pawar faction is denying it on the face of it, but has the die already been cast?
2: अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है, कोई भी चर्चा डीलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की, तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो हम हो सपा हो 50% के बारे में हम सोचेंगे ऐसा हमने किया कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। सो लेट मी रीअश्योर यू दैट ऑल 8 MPs ऑफ NCP-SP एंड ऑल आवर MLAs वी स्टिक टुगेदर।
3: दिस वाज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू माय प्रेसिडेंट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटी कॉल्ड भुवनेश्वरपुर, देयर the mayor was disqualified, Nagaradhyaksha was disqualified.
1: Already Dr. Ajay Alok has left us with a dialogue from Agnipath saying topi sambhal kahi ur na jaye. Samir Chaugankar, Ashutosh, both continue with us. I'm going to ask you straight away, NCP Sharad Pawar, is it going to vote with the government or not? Samir ji,
4: 100%. जिस तरीके से कल शरद पवार की जो बैठक हुई है जयंत पाटिल के साथ, जिस तरीके से सुप्रिया सुले की कल देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने प्रेस ब्रीफिंग की और बहुत स्पष्ट कहा कि इस पर विचार करेंगे, यह तय है कि शरद पवार के 8 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर सेशन के अंदर बिल आता है तो उसके समर्थन में वोट करेंगे, और ये हो सकता है कि वो वॉकआउट कर जाए। उस स्थिति में भी सरकार का समर्थन मिलने वाला है, और इस मामले में कोई दो राय नहीं। बस ये देखना है कि अभी बातचीत चल रही है कि स्टेट लेवल पे भी इनका समर्थन होगा, क्या दोनों एनसीपी मर्ज होकर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, या फिलहाल सिर्फ शरद पवार अभी वॉकआउट कर जाएंगे, उनकी टीम पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, या वो लोकसभा के अंदर एनडीए के फेवर में वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तय है कि वो अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। सेशन में अगर ये बिल आता है तो 100% एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो है वो सरकार का समर्थन करने जा रही है।
1: दोनों साथ में मर्ज होकर के फिर जाकर के एनडीए में भी मिल सकते हैं, बिकॉज कल जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग थी उसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे,
4: प्रफुल्ल पटेल भी थे उसके
1: साथ में, सब लोग साथ में
4: मीटिंग भी थे उसके अंदर।
1: पर वो तो कह रहे हैं, जयंत पाटिल तो कह रहे हैं कि मेरी कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके बारे में अवगत करा गए थे।
4: ठीक है, वो तो मतलब एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी मीटिंग क्यों देर रात को मीटिंग हुई, उसके लिए इनको देर रात मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी, या देर रात की मीटिंग बता रही कि मीटिंग क्यों पर्पस हुई थी, और सारे मुझे लगता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे कि स्टेट कौन लीड करेगा, सेंटर में कौन लीड करेगा, क्या सुप्रिया मिनिस्टर सुले मंत्री बनेगी, ये सारी बातें मुझे लगता है समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये तय है कि अब शरद पवार का मन बन गया है और वो एनडीए के साथ जा रहे हैं।
1: Ashutosh, then does it mean we are going to see Supriya Sule accommodated at the center as a minister with Praful Patel largely taking care of the party and the alliance at the state? What are you hearing about which way Sharad Pawar's party is headed now?
5: Padmaja, first of all, I will not make any prediction because, you know, my experience in the last 12 years is any prediction made is always going to be wrong. So I will not make any prediction at all. So what I read is that I think Sharad Pawar politics is almost over in Maharashtra, and basically he is trying to survive, and not he but basically he is trying to make some ground for his daughter Supriya Sule, because that's the only thing left with him. As practically, if you look at, there are 8 members of parliament from the Sharad Pawar group, but how many of them are going to be with him, that's a big question. And and in my opinion, this Sharad Pawar party will again will either collapse within a few days or few weeks, or they will merge with the BJP sooner or later. Otherwise they can't survive.
1: In the long run, Samir ji, अगर वो मर्ज कर भी जाते हैं तो कि पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो वोट बैंक है एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक, और जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे तो उसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा था, तो एक तरीके से इट्स गोइंग टू बी द किस ऑफ डेथ. सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सुप्रिया सुले, इफ वी अज्यूम दैट शी इज गोइंग टू बी अकोमोडेटेड एट द सेंटर, इन द लॉन्ग रन द एनसीपी विल बी ओवर. अगले चुनाव में तो हार जाएंगे ना वो फिर.
4: नहीं, मुझे लगता है कि वो एनसीपी में मर्ज करके जाएंगे, और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जो उनका वोटर है, जो बारामती से सुप्रिया सुले सांसद बनती है, वहाँ उनका मराठा वोटर बहुत ज़्यादा है जो शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है. मुझे लग रहा है वो बीजेपी में मर्ज नहीं करेंगे, वो एनसीपी में मर्ज होगी और एनसीपी समर्थन देने वाली है. और शरद पवार जानते हैं कि अब उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक समय नहीं है, उनका हेल्थ भी बहुत खराब है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो सत्ता आने की स्थिति में नहीं है. जिस तरीके से उद्धव पार्टी की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर है, शरद पवार की पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है, तो उन्हें मालूम है कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आएंगे नहीं, तो कब तक वो खाली अपनी बेटी को सांसद बनाकर बारामती के अंदर बिठा के रखेंगे, और जो डेवलपमेंट के काम करना है उसके लिए आपको फंड नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड की जरूरत है. तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब जाना पड़ेगा, और उनको यह भी मालूम है कि जब अजीत पवार चले गए थे एनसीपी के साथ, उसके बाद विधानसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन अजीत पवार ने किया, 42-44 एमएलए वो लेकर आए, तो जनता उनके साथ जा रही है. और मुझे लग रहा है कि शरद पवार को लग गया है कि अगर राजनीति में अब सर्वाइव करना है बेटी के लिए, तो मुझे एनडीए साथ जाना होगा. अब कांग्रेस के साथ रहकर कोई भविष्य नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई भविष्य नहीं है.
1: सारे लोग ऑन बोर्ड हैं इससे, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस के साथ मर्ज करने के फेवर में हैं. अगर शरद पवार सुप्रिया सुले जाते हैं एनसीपी के साथ मर्ज करने में, तो क्या उसमें भी टूट हो सकती है, कुछ लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या सब एक साथ ही जाएंगे?
4: नहीं, मुझे लगता है लगभग सारे सांसद विधायक एक साथ जाएंगे. जितेन आवाड़ को दिक्कत जरूर हो सकती है, जितेन आवाड़ जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर शरद पवार ने अगर मन बना लिया कि मर्ज कर
1: अगर हसन मुशरफ और नवाब मलिक आ सकते हैं तो जितेन आवाड़ क्यों
4: वो वही जाएंगे, शरद पवार मूड बना लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सारे एमएलए और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ में आ जाएंगे.
1: देखिए, अगर फिराद हकीम जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आ सकते हैं यहाँ पे हसन मुशरफ, नवाब मलिक, जिसके लिए बीजेपी कैंपेन तक नहीं करती है, एंड येट ही कंटिन्यूज टू स्टे विद द पार्टी. But where do the numbers stand right now? Because the next 5 days, not even 5 days, the next 2 days are going to be critical. We are in Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days, you're going to see phenomenal changes likely happen. Now, let's take a look at what is the existing strength of the NDA. Essentially, you've got 298 plus NCPI 20, UBT rebels 6 already joining them. NCP Sharad Pawar, our experts are saying, 8 of them are going to be joining. Now, YSRCP had already voted with the NDA, so 4 of theirs. We are also putting DMK over here, 22. I will tell you why in just a second. But basically, that means NDA is short of only 2 for that magic figure of 360. Now, where does this additional 2 come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. 9 remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and 7 independents. सिर्फ दो की और जरूरत है समीर जी?
4: जेएम विल सपोर्ट, उसने बोल दिया जेएम ने कि वो सपोर्ट कर सकता है इसमें।
1: तो बस और
4: शिवसेना शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके अरविंद सावंत ने भी बोल दिया है कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है,
1: यानी कि 360 मिल गए।
4: बिल्कुल,
1: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
4: उसमें से कई एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना।
1: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके। डू यू थिंक दिस 22 इज गोइंग टू क्रॉस ओवर एंड वोट विद द एनडीए? एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
5: See, Padmaja, we are assuming that the similar will be again tabled in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?
1: BJP was always willing. Amit Shah said it on the floor of the house. He said, "Mujhe ek ghanta DJ mein abhi link karke aata."
5: No, Padmaja, I don't buy that argument, because if BJP was very serious enough, they should have put the things in the bill itself. It's a legal document. The legal document has to be vetted. It has to be seen, because it's not any normal document. So, and if the BJP was so serious about it, they would have brought an amendment in the parliament. They didn't bring the amendment.
1: And now it's very clear that that's going to be an amended bill. So you think nobody, including the DMK, is going to have a problem? Why I'm again asking this is because one week ago, in Karur, in a rally, Vijay said that delimitation is going to be the death knell for parties in the south, for the southern states. But don't you think the DMK is taking a very big risk if they vote for this bill?
5: Padmaja, see, the delimitation has to be done. The women bill has to be passed. Nobody has a problem with the delimitation bill. In principle, nobody has a problem with the women's bill. The problem was that if the population is going to define the number of seats, that's why the South Indian states were very apprehensive about it. And they made it very clear. Now, if the 50% formula is there, then DMK will also not have a problem. Others will also not have a problem. The issue is the BJP is conceding opposition's point. If they are conceding, if they are climbing down, then why the opposition should have a problem?
1: Okay, great. So even the DMK shouldn't have a problem. Now, what I'm interested in is what's happening in the Samajwadi Party. Kya wo abstain kar sakte hain, Samir ji? Kya? Abhi matlab 360 plus to ho hi gaye hain according to this figure, but 360 se zyada bhi ho sakte hain, abstention bhi ho sakte hain.
4: Akhilesh Yadav samarthan kar sakte hain is bill ka. 11th aur bilkul is baat ki khabar hai ki Akhilesh Yadav
1: kya April mein?
4: Nahi, mujhe lag raha hai ki ab Akhilesh Yadav jo 50% ki baat hai us par samarthan kar sakte hain, aur agle Akhilesh Yadav samarthan nahi karenge to ye maan ke chalenge Samajwadi Party ke काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से एब्सेंट करने वाले पार्लियामेंट के अंदर, और कई कांग्रेस के सांसद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एब्सेंट करेंगे, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
1: कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट?
4: यस, कांग्रेस के भी करने वाले हैं। बिल अगर आता है इसका तो अपोज कर,
1: कांग्रेस के कहां के सांसद एब्सटेन करेंगे?
4: अब ये पता नहीं पड़ रहा है कहां के, लेकिन करने वाले जरूर है। आप तय मान के चलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट करेंगे उस दिन।
1: All right. So, more breaking news being given here by Samir Chogankar that there could be... Yes, Ashutosh ji, do you have something to say about it?
5: No, I disagree with Samir. He's a dear friend, but I disagree with him.
1: All right. We will not have to wait for very long. Like I said, just 4 days left. But from the looks of it, 360 seems to be a given now, which means that delimitation will happen, women's reservation will come in, and we are going to see a completely new election in 2029. And who knows? Maybe even one nation, one election. Stay with NDTV for the very latest. Thanks for watching. Tamil Nadu Chief Minister Vijay Jananayagan is to finally hit the screen after over 6 months of a legal battle. Jananayagan is going to be out on the 23rd of July. Satluj streaming storm rages on. Sources have told NDTV that the IT ministry is now mulling action against OTT platform Z5 for releasing the controversial film without CBFC certification. Sources say the government is also considering a certification requirement for films and content on OTT platforms in the future.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, on Saturday.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: They say morning shows the day. Markets often have